आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और मैं यही कह रहा था कि रैली के पानी को लेकर नई प्लानिंग। जी हाँ, हाल ही के सूखे के बाद रैली प्रशासन ने पानी बचाने के नियमों में बड़े बदलाव की सोच रखी है। रैली वाटर ऑफिशियल्स ने बताया कि फॉल्स लेक में पानी का स्तर अब 79% तक वापस आ गया है, इसलिए पाबंदियों में थोड़ी ढील दी जा सकती है। एक नए दैट इज 300 मिलियन के रिजर्वायर पानी के टैंक का प्लान भी जो है वो चर्चा में है। अगर ये होता है तो पानी की दिक्कत कम हो सकती है। मेरा तो यही कहना है कि दिक्कत रहे या ना रहे, ज़रूरत के हिसाब से ही पानी का यूज़ करना चाहिए। पानी की टेक केयर आपको ही करनी है ताकि आप ही को दिक्कत ना हो, है ना। इसलिए सोच समझ कर पानी का यूज़ जो है वो करना चाहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन निर्वदा नाइट्स। एंजॉय किया आपने ये गाना, गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। तो मेरा कुछ सवाल है आपसे कि क्या आप रैली में रहते हैं? अगर हाँ तो हाल ही सूखे के बाद जो है पानी बचाने का नियम तो ढील कर दिया, लेकिन अलग नियम मैं कह रहा हूँ आपको। अगर आप रैली में रहते हैं तो अब नगर निगम आपके घर के बाहर खुले में पड़े सूखे पत्तों का ढेर नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा, नहीं उठाएगा। ढेर चाहे ढेर सारा हो या ढेर चाहे कम हो, उठाया नहीं जाएगा। अब पत्तों को साफ करने के लिए नए नियमों का पालन करना होगा। नए नियम क्या है इसके ऊपर मैं आपको डिटेल में सारा कुछ बताऊंगा, लेकिन अब पत्तों का ढेर नगर निगम नहीं उठाएगा, ये चीज़ है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरापन निर्वाणा नाइट्स, पक्का देसी पक्का लोकल।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाण नाइट। तो नियम कुछ इस प्रकार है कि नियम नंबर एक, बीन में डालो। आप अपने सूखे पत्तों को हरियाली वाले कचरे के डिब्बे में, मतलब हरे रंग के यार्ड वेस्ट कार्ट में भरकर रख सकते हैं। रैली लीफ कलेक्शन FAQ जिसे कहा जाता है। अब ये कचरा हर हफ्ते उठाया जाएगा, डेली बेसिस पे नहीं उठाया जाएगा। बैग में भरो। अगर पत्ते डिब्बे से ज़्यादा है तो आपको उन्हें बायो डिग्रेबल पेपर बैग, मतलब कागज के सड़ने वाले थैलों में भरकर डिब्बे के बगल में फुटपाथ पर रखना होगा। आप एक बैग, मतलब एक बार ज़्यादा से ज़्यादा 15 बैग रख सकते हैं। ये बैग आपको खुद बाजार या हार्डवेयर स्टोर से खरीदने होंगे, है ना। और भी

0: और झुमका।
1: और नियम नंबर 3 क्या है आपको बताऊंगा जरूर। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। वही छोड़ दो, लीव इट। प्रशासन का ये भी कहना है कि पत्तों को फेंकने के बजाय उन्हें मशीन से काट कर घास पर ही छोड़ दे या खाद बना ले जिससे मिट्टी को पोषण मिलेगा। ये भी एक नियम है। अब लोग गुस्सा है। अब लोग क्यों गुस्सा है ये बताना चाहूँगा। कुछ लोकल लोग इस नियम से काफ़ी चिढ़ गए हैं क्योंकि अब उन्हें अपनी जेब से पैसे खर्च करके कागज़ के बैग खरीदने पड़ रहे हैं और मेहनत जो है वो ज़्यादा लग रही है। पर अभी ऐसा है कि पर्यावरण को अच्छे से रखना है, साफ रखना है, सारी चीज़ें करनी है, तो कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ करना बनता है। फिलहाल ये नियमावली तो जारी कर रखी है, नया अपडेट तो कुछ है नहीं। जैसे ही कुछ नया अपडेट आता है आई विल लेट यू नो सून। एंजॉय करते हैं।

0: आप सुन रहे रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, और अब वक्त हो चुका है बॉलीवुड की कुछ खबरें जान लेने का। तो पहली खबर यह है कि सलमान खान बनेंगे कर्ण। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर सलमान खान के फैंस के लिए है। वो बहुत जल्द महाभारत के महान योद्धा कर्ण के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस मेगा बजट फिल्म को मशहूर डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा बना रहे हैं और इसे फरहान अख्तर जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। मेकर्स ने इस खबर पर पक्की मुहर लगा दी है, मतलब भाईजान का एक नया हिस्टोरिकल अवतार देखने मिलेगा उनके फैंस को। और भाईजान आजकल गणपति में इतने क्यूट नजर आ रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। अभी तो भाईजान आरती कर रहे थे गणपति की, तो उनकी बहन ने उन्हें बताया कि आप सही तरह से रोटेट नहीं कर रहे हो, आप सही तरह से रोटेट कीजिए। तो भाईजान ने तुरंत करेक्शन किया और आरती को सही तरह से रोटेट किया। यही तो सादगी है आपकी, इसलिए फैंस का दिल भाईजान बार बार सोशल मीडिया पे जीतते हैं।
1: एंजॉय कर इंडिया से यारी है मशीन से, उड़े चाहे आसमां में, दिल है जमीन पे।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्मला नाइट्स एंड कैसे चल रही है आज की शाम की आपकी वाइब। वाइब तो कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की चल रही है। जी हाँ, कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की वाइब। कुणाल खेमू और प्रीति जिंटा की अपकमिंग फिल्म वाइब को सेंसर बोर्ड ने ए सर्टिफिकेट दे दिया है। ये फिल्म 18 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म में आपको भरपूर एक्शन और कॉमेडी का मिक्स डोज जो है वो देखने मिलेगा। कुणाल खेमू जो कि बहुत फिटनेस फ्रीक है और बहुत ही डाउन टू अर्थ, लाइक बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उनकी मैं देखते रहता हूँ अक्सर सोशल मीडिया पर। एंड कुणाल खेमू ने तरह तरह के रोल भी इस फिल्म में निभाए है। ही इज़ अ डायरेक्टर, ही इज़ एन एक्टर और कहानी भी कुणाल ने लिखी है, तो मजा आने वाला है ना। एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी, पक्का लोक।

मतलब जैसे ही कुणाल खेमू का नाम सामने आता है तो मुझे याद आता है तन्नू ले के जाना अपने ना राह। ये गाने की वाइब हमारे टाइम पे तो इतनी थी कि ये गाना बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो पसंद किया जाता था। आज भी उसी चाव से ये गाना जो है वो सुना जाता है। एंड उसमें कुणाल खेमू की हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई थी, उनके आउटफिट्स, उनकी फिजिक, खैर उनकी फिजिक तो आज भी कमाल की है, नो डाउट। तो कुणाल खेमू नया लेके आते हैं कुछ भी, लाइक यू नो मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। एक बहुत अलग टाइप का उनका जॉनर जो है वो रहता है, एंड इट्स लाइक मज़ा आएगा कुणाल खेमू की वाइब बड़े पर्दे पर देखने के लिए, और प्रीति जिंटा का साथ तो उनको है ही। तो एंजॉय करते हैं अगला ही गाना, बने रहिएगा रेडियो नर पर, पक्का देसी पक्का लोग।

0: देखिए आपने गाना आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स। तो कुणाल खेमू की बात निकले और कलयुग मूवी की बात ना निकले, ऐसा हो सकता है क्या भला? मतलब म्यूजिक के बारे में तो ये मूवी काफी अच्छी थी, तुझे देख देख सोना, ये जो गाना इट्स लाइक नथिंग इज लाइक दैट, एंड उसके बाद आदत को हम कैसे भूल सकते हैं, आतिफ असलम का वो आलाप कैसे भूल सकते हैं। तो आदत गाना आतिफ असलम का जो इंट्रोड्यूस हुआ था इसी मूवी में हुआ था, एंड वो टाइम में तो इतनी वाइब थी, आतिफ की आवाज़ बहुत फ्रेश आवाज़ थी, आतिफ को बहुत लोग उसी गाने से आई गेस जानना शुरू किए थे। लेकिन मैं आतिफ असलम को पहले से ही लाइक यू नो उनके गाने सुनना मुझे बहुत पसंद लगता था, जब उनका बैंड था तब से मैं उनके गाने जो है वो सुनते आ रहा हूँ, एंड आदत गाने के बाद तो कमाल का ही एक करिश्मा हो गया था ऐसा मुझे लगता है। एंजॉय करते हैं, अगला गाना बने रहेगा रेडियो नायरा पर।
1: दूध उबालोगे, दूध उबालोगे तो झाग लगेगी, और जो सावन में ऐसे नाचोगी तो आग लगेगी।

कुणाल खेमू के साथ प्रीति जिंटा का नाम अगर लिया है तो मैं क्या ही कहूँ। प्रीति जिंटा की तारीफ करूँ तो बेमिसाल खूबसूरत। प्रीति जिंटा को पहली बार मैंने टीवी पर देखा था एंड सोल्जर फिल्म का गाना था टाइटल सॉन्ग। प्रीति जिंटा की खूबसूरती आज भी उतनी ही बरकरार है एंड उनके डिंपल के बारे में तो क्या कहना। बहुत सारे लोग तो प्रीति जिंटा के फैन है अचानक से, लाइक प्रीति जिंटा की बहुत मूवीज़ आई थी उस टाइम एंड देन प्रीति जिंटा की कोई मूवी नहीं आई, लेकिन आज भी खूबसूरती की बात अगर निकलती है तो प्रीति जिंटा का नाम हमेशा ऊपर रहता है। एंड मैं तो उनके डिंपल का, उनके एक्टिंग का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ एंड जिस तरह से डाउन टू अर्थ, जिस तरह से उनका नेचर है फ्रेंडली, वो शायद बहुत ही कम लोगों में देखने मिलता है। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंजॉय करते हैं अगला एक गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर। पक्का देसी तो है, पक्का लोकल भी है। एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड रणबीर जो है वो उनकी फिल्म में काफ़ी बिजी है। रामायण का उनका जो मूवी आने वाला है फर्स्ट पार्ट, ये काफ़ी बिजी रहने वाला है एंड उसमें काफ़ी शानदार तरह के VFX जो है वो भी हमें देखने मिलेंगे। कुछ चीज़ें मतलब ऐसा हुआ कि सीता जो नज़र आ रही है साई पल्लवी, तो सीता के पीछे उनकी बहन का एक किरदार एक एक्ट्रेस निभा रही है। उनका चेहरा इतना हाईलाइट हो चुका था कि लोग उनकी इस खूबसूरती की तारीफ करने लगे। बहुत सारे लोगों ने तो ये भी कहा कि सीता का किरदार जो है वो साई पल्लवी ने तो निभाना ही नहीं चाहिए, उनके पीछे उनकी जो बहन का किरदार निभा रही एक्ट्रेस है उन्होंने निभाना चाहिए। उसके बाद ऐसा हो रहा है कि उनका चेहरा जो है वो ब्लर कर दिया गया है, साई पल्लवी का चेहरा थोड़ा लाइमलाइट में लेके आ रहे हैं। तो क्या वाकई में जनता खुश रहेंगी इससे? क्या आपको भी लगता है कि जो सीता मैया का किरदार है वो किसी और ने निभाना चाहिए था? लाइक आई डोंट नो, लाइक आपकी राय क्या है?

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे फैंस में बहस छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पर। मैं देखते रहता हूँ अक्सर कि सीता मैया का किरदार जो है वो किसी और एक्ट्रेस ने निभाना चाहिए था, क्योंकि साई पल्लवी को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं कि वो नहीं सूट करेगी सीता मैया का किरदार, उन्हें नहीं जच रहा है, ये गलत कास्टिंग हो गई है। तो ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड अगेन 7 से 10 का ये टाइम आप लोगों के साथ बात करते करते कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। कल मिलूँगा आपको रेडियो नायरा के निर्वाणा नाइट्स इसी शो पर। 7 से 10 मेरा ये शो चलता है एंड डेफिनेटली आप एंजॉय कीजिएगा। बापा विराजमान हो चुके हैं, बहुत अच्छी वाइब है वातावरण में, भक्तिमय वातावरण जो है वो हो चुका है। एंड यस, ऐसी पॉजिटिविटी हमेशा बरकरार रखिएगा। एंजॉय करते हैं अगला एक गाना एंड मिलता है कल। तब तक के लिए गुड नाइट, शाबाश।

था ना कभी, ऐसा न था हाल मेरा पहले, हाल ये मेरा हुआ है अभी, वो ख्वाब है या हकीकत है।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

नया साल, नई उम्मीदें, नए गाने, नए सपने, नई बातें नए साल पर, सब कुछ नया सिर्फ रेडियो नायरा पर।

जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

पड़ा जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने। शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को, हंस मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो। घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते, भर डाला ओटू इनके फेस बनते, इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 440 90 AM, पक्का देसी पक्का लोक।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.
1: आप सुन रहे हैं नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 414 90 AM.

हरमीत, तुझे देख के पता है क्या लगता था? कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: कि मेरे बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

Yonara 101.9 FM 99.9 FM SD4 49 AM आप सुन रहे हैं Yonara 101.9 FM 99.9 FM SD4 49 AM पक्का देसी पक्का लोका।

0: are delighted to bring our play.
1: Jaane, Jaane, Jaane.
0: Can you be together, all of you?
2: Jaane, Pehchaane, Anjaane.
0: Dedicated superstars of this play are saying Jaane, Pehchaane, Anjaane, and our tour starts from 5th in Houston. Our friend Rajender of Star Promotion is bringing this play to various cities. A lot of cities are booked, and there are certain cities which are going to be still. And if you have any issue, if you problem, please look at the number and call up and bring this play to your city. The play deals with togetherness and different generations. It's music by
3: Anumale.
4: And lots of laughter.
0: Lots of
4: emotions.
3: You lots of cry.
0: She also speaks in between. She is everybody. My name is Anupam Kher.
5: I'm Meghna Malik.
6: I'm Swarup Sampath.
7: Maya Sharma.
8: Shraddha Mandale.
9: Amin D'Souza.
10: Gajendra Ahire.
0: Writer director Gajendra Ahire.
6: Yes.
9: I'm Vikas Rawat.
6: Yes.
0: And we are coming to America and to Canada. Rajender ji, jamado.
5: Yes.
0: अपने अलग अलग भाषाओं के लोग आ रहे हैं बच्चों को शुर कर पटका
6: जरूर आओ जो टिकट लाइने मजा उसे
5: राम राम जी जल्दी तो जल्दी मिलने आ रहे हैं थारे ते
7: अमित सर एक साथ आ रही थी अमेरिका अपने सबसे मिले ला
0: अलग अलग भात भात के और कोई भी
10: नक्की आ सुंदर अनुभव सुंदर सुंदर एक अनुभव घेऊन जा
8: लवकर लवकर टिकट बुक करा
9: प्लीज बन्नी जास्ती जना बन्नी एल्लारू बन रही
0: अरे वाह इंडिया विल बी सून इन यूएस एंड कनाडा विद द प्ले
2: जाने पहचाने अनजाने
11: हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब मेरा नाम है नायाब मिढा एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो नायरा एंड गेस व्हाट आई एम ब्रिंगिंग माय शो राजकुमारी माय पोएट्री स्टोरी टेलिंग शो राजकुमारी टू रैले दिस अक्टूबर 2nd कैच मी लाइव एट द गार्नर परफॉर्मिंग आर्ट्स सेंटर प्रेजेंटेड बाय ओहो प्रोडक्शंस टिकट्स जल्दी जल्दी निकल रहे हैं तो ग्रैब योर्स टुडे थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव ऑलरेडी सी यू देयर थैंक यू सो मच जल्दी मिलते हैं कविताओं के साथ कहानियों के साथ किस्सों के साथ
12: रेडियो नारा 101.9 FM 99.9 FM SD4 1490 AM पक्का देसी पक्का लोकल

नी तू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई पंग होगी।

नीतू जट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकां लई भंग होगी।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोका।

Yeah. भाई तेरा बस लिखता गाने हर दुनिया देती ताने बस इन दिक्कत पर जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक को ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: रेडियो नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 1490 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: तुझे देख के पता है क्या लगता था कि तू कुछ बहुत बड़ा करेगा। कितना पोटेंशियल है तुझ में। क्या हो गया है? कुछ बन क्यों नहीं पाया तू?

0: बस का नहीं था।
1: तो तू अपना आलस छुपाने के लिए झूठ बोलेगा?
0: हाँ, झूठ में क्या बुराई है?
1: क्या बुराई है किसी सच्चे आदमी से पूछना?
0: सच्चा आदमी तुझे नहीं पता क्या?

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: Lyra 101.9 FM, Raleigh Durham. Also available on 99.9 FM, HD4 and 1490 AM. Pakka Desi. 99.9 Lyra
1: Me Khoja. हेलो हेलो हेलो पीपल, प्रणाम नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, केम छो, आ गई मैं प्राची और आप सुन रहे हैं सुनसरा रेडियो नायरा पे 99.9 एफएम, HD4 101.9 एफएम और 1490 AM। आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, लेकिन जितना सिंपल है शायद उतना ही अनकंफर्टेबल भी। क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या बस इसे मैनेज कर रहे हैं? एक मिनट, डोंट आंसर येट, पहले एक नॉर्मल वीक डे इमेजिन कीजिए। सुबह अलार्म, बस 5 मिनट्स और फिर सडन ओ माय गॉड, बच्चों को स्कूल जाना है, ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट, लंच बॉक्स, वाटर बॉटल, कीज, फोन, शूज, फिर ट्रैफिक, वर्क, ईमेल्स, मीटिंग्स, मैसेजेस, ग्रॉसरी, लॉन्ड्री, डिनर, होमवर्क, किचन, थोड़ा स्क्रॉलिंग और रात को जब बेड पर गिरते हुए आज भी बहुत कुछ कर लिया, लेकिन एक छोटा सा सवाल, आज मैंने जिया क्या? और यहीं से आज की बात शुरू होती है, बिकॉज मे बी बींग बिजी एंड बींग अलाइव आर नॉट द सेम थिंग। और प्लीज़ आज मैं आपको कोई 5 स्टेप्स को बेटर लाइफ नहीं देने वाला वगैरह वगैरह, मैं खुद को नहीं पता लाइफ का, मुझे खुद को नहीं पता लाइफ का परफेक्ट फॉर्मूला क्या है। हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं बस कुछ ऑब्जर्वेशंस लेकर आई हूँ, कुछ रिसर्च बैक्ड आइडियाज, कुछ मेमोरीज, कुछ क्वेश्चंस और थोड़ी सी मस्ती, बिकॉज लाइफ ऑलरेडी सीरियस इनफ है। वीडियो पर हम उसको और सीरियस क्यों बनाएं? तो आज लाइफ को सॉल्व नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा लिव करेंगे, है ना? तो ये गाना सुनिए और आई विल बी बैक।

0: Olé, olé, olé. Welcome back to Sun Zero Radio, Naira Pay 99.9 FM, HD4 101.9 FM, or 1490 AM. चलिए पहले एक मिथ तोड़ते हैं. बिजी होना और प्रोडक्टिव होना सेम चीज नहीं है, और प्रोडक्टिव होना भी लिविंग के बराबर नहीं है. हमने बिजी को ऑलमोस्ट स्टेटस सिंबल बना दिया है. क्या चल रहा है कोई पूछता है तो हम बोल देते हैं हाँ बस यार वेरी बिजी, और सामने वाला भी सेम, जैसे दोनों ने ओलंपिक मेडल जीतना जीत लिया हो ना, बिजी ओलंपिक्स. ओ सो गोल्ड मेडल गोज टू जिसके पास लंच करने का भी टाइम नहीं है. बट साइकोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग डिस्टिंक्शन है. बिजीनेस कैन गिव अस लाइक अ फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस एंड प्रोग्रेस इवन व्हेन द एक्टिविटी इटसेल्फ इज नॉट मीनिंगफुल. और कभी कभी हम इतने टास्क कंप्लीट करते हैं कि दिन सक्सेसफुल लगता है, लेकिन सक्सेसफुल डे और सेटिस्फाइंग डे जरूरी नहीं कि सेम हो. आपने 27 ईमेल्स का रिप्लाई कर दिया, ग्रेट. लॉन्ड्री हो गई, अमेजिंग. ग्रॉसरी आ गई, ग्रेट. बिल्स पेड, परफेक्ट. और बट फिर भी लाइक अंदर से कुछ मिसिंग. व्हाई? बिकॉज ह्यूमन बींग्स को सिर्फ कंप्लीशन नहीं चाहिए, हमें कनेक्शन, इंजॉयमेंट, मीनिंग, रेस्ट और ऑटोनॉमी भी चाहिए, है ना. और यहाँ एक फनी प्रॉब्लम है, हम रेस्ट को भी टास्क बना देते हैं. ओके, टुडे आई एम गोइंग टू रिलैक्स. रिलैक्सेशन को भी लाइक टाइम टेबल में बांट दिया हमने कि 6 से 6:30 शाम में रिलैक्स, या 6:31 को उप्स डिनर बनाना है. हम लिटरली रिलैक्सेशन को भी लाइक मैनेज कर रहे हैं. मे बी जिंदगी का पर्पस हर एम्प्टी मिनट को फिल करना नहीं है, कुछ एम्प्टी मिनट्स एम्प्टी रहने भी चाहिए, है कि नहीं, सोचिए. तब तक मैं आती हूँ फिर से.
1: हेल्दी लिविंग मीन्स इंडियन ट्रेडिशन. सुनते रहिए हेल्दी रहने की म्यूजिकल परंपरा ओनली ऑन रेडियो नायरा.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स, नॉर्थ कैरोलिना।
1: नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: कर गई चुल।
1: सुनते रहिए रेडियो नायरा 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।
2: हेलो, वेलकम बैक टू सनसरा रेडियो नायरा पे 99.9 FM, SD4 101.9 FM और 4090 AM पर। सो टेल मी, व्हाट डज अ गुड लाइफ एक्चुअली लुक लाइक? Maybe social media has confused us a little, because online everybody's life looks extraordinary, है ना? एकदम से perfect vacation दिखते हैं सबके, perfect homes दिखते हैं, एकदम perfect bodies, perfect families, perfect birthdays, perfect breakfast. Even their coffee looks happier than me, I guess. But real life does not look like that. Real life has arguments, missed flights, bad hair, kids refusing to go to school, kids refusing to wear the shoes, burnt food, traffic, unexpected bills, plans cancelled, people changing, bodies changing, career changing, and still life can be beautiful. Because perhaps a good life is not a life without a problem. Maybe it's a life with enough things that make the problems worth handling. People you love, people who love you, work that gives you some sense of purpose, friends you can be stupid with. उससे मुझे है ना मेरा recent travel याद आया मुझे. माफ करना मेरे फ्रेंड्स अगर सुन रहे हो, मैं ये रिवील कर रही हूँ ऑन एयर. बट बर्न फूड से मुझे याद है, सी नॉर्मली आप अगर किसी के यहाँ विजिट कर रहे हो वगैरह, वो एक्सपेक्टेड है कि खाना बनाएंगे, खाएंगे, कुछ दिन तक आपको याद रहेगा किसने क्या बनाया. बट कुछ मेमोरीज ऐसी क्रिएट हो जाती है कि लाइफ टाइम आप भूल नहीं सकते. मेरी फ्रेंड ने लाइक वो शी इज़ नॉट मच इनटू कुकिंग आई गेस, बट मैं उसके घर गई थी एंड उस इतने प्यार से उसने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई थी. बट मुझे याद रह गई उसने जो मेरे लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाई, वो भी एकदम ब्लैक क्रिस्प क्लियर, बहुत टेस्टी. बट सी दैट इज़ मेमोरी, वो हमेशा मुझे याद रहेगी ये चीज़ें कि उसका एफर्ट कितना ज़्यादा मीन करता. एक फ्रेंड ने बनाया था पनीर की सब्ज़ी और उसमें पनीर ही गायब था. So this is the real moments you capture, you remember forever. Hello? So because like perhaps a good life is not like life without problems. Maybe it's a life with enough things that make the problems worth handling. People you love, people who love you, like work that gives you some sense of purpose. Friends, you can be stupid with. A home where you can excel, a body you are learning to care for, a mind that gets some quiet moments that make you laugh, and memories that make you say like, "Haan, wo time best tha ya wo time acha tha." A good life may be less about having everything and more about experiencing what you already have. So enjoy all your silly moments. वही सिली चीज़ें करने से डरो मत, ये ही चीज़ें आपको लाइफ लॉन्ग याद रहेगी. अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू दैट फ्रेंड.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM 99.9 FM SD 44 1090 AM पक्का देसी पक्का लोका।

0: stress is real. We cannot romanticize everything. Some seasons of life are genuinely exhausting. Sometimes you are not failing to leave. You are simply surviving a difficult phase. And that's important too. But in ordinary seasons, maybe we can ask ourselves one tiny question. Is there enough life inside my life? Not enough achievement, not enough productivity, not enough money, not enough followers, enough life, enough laughter, enough connection, enough curiosity, enough rest, enough music, enough ridiculousness. Enough moments where you forget to check the clock, because maybe life does not need to become completely different. Maybe we just need to become slightly more present inside the life we already have. And we have a caller again. Let me take on air. Hello.
1: Hello. Hi, Prachi.
0: Hi. Hi. How are you?
1: I'm back. I'm doing well. I'm talking to amazing Prachi.
0: Thank you so much. Really appreciate that. Please let me know your name, please.
1: My name is Unnati from Raleigh.
0: Hi, Unnati. Kaisi hain aap?
1: एकदम बढ़िया प्राची, आज का टॉपिक भी आपका सुपर हिट है एंड आप ऐसे टॉपिक लेते हो, उस पर डिस्कस करते हो जो हमारी लाइफ की रियलिटी होती है. सो आई थॉट ऑफ कॉलिंग यू.
0: ओह प्लीज, यस डेफिनेटली, बताइए.
1: हाँ, तो बस वही, मुझे आप जो बोल रहे हो बड़ा अच्छा लगा कि या हम पता नहीं अपना दिन रात हर मोमेंट, हाँ सारे इम्पोर्टेंट मोमेंट पता नहीं कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं और जो जीने का मजा है वही भूल जाते हैं,
0: है ना.
1: यस डेफिनेटली. तो
0: चलो बताओ ना, एकदम सिलीएस चीज क्या की आपने जो अभी तक याद है आपने रिसेंटली, ऐसा कुछ सिली फन किया हो तो यस ये मैंने जिया है.
1: सिली फन तो मैं अपनी गर्ल्स, मेरी कोई गर्ल्स मतलब फ्रेंड्स, गर्ल्स गैंग है सॉर्ट ऑफ, तो हम लोग नाइट आउट करते हैं, सिली गॉसिप करते हैं जिससे मन इतना उत्साह से भरा रहता है एंड डोपामाइन रिलीज होता है. सो इट्स रियली फन, यू नो. एंड या आई लाइक गोइंग फॉर डांस पार्टीज इवनिंग्स विद माय फ्रेंड्स, लाइक स्पेंडिंग इवनिंग्स, बहुत मजा आता है कि ये मोमेंट सही में बहुत रिलीज करते हैं और हम लोग बहुत हल्के होके आते हैं. लिटरली जो स्ट्रेस होता है वो कहाँ चला जाता है छू मंतर, एंड दिस इज रियली रिक्वायर्ड, राइट. ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टाइम स्पेंड करना इस तरह का बहुत इम्पोर्टेंट होता है.
0: And
1: that's what you're talking about, right?
0: Yes.
1: Yeah.
0: I totally agree that. और उन्नति, आज आप लकी रही हैं, आपको पता नहीं शायद पता है या नहीं पता है, एंड यू वन आई गेस अ गरबा नाइट टिकट फॉर लाइक हवेली में.
1: ओह वाओ,
0: यस
1: awesome, thank you so much Sachi.
0: Yes.
1: That's definitely another fun night I'm planning now.
0: Yes. meri team aapko yahan pe contact karegi and they'll provide you that.
1: Sure. Thank you so much. और आप ऐसे ही हम लोगों को entertain करती रहिए.
0: Thank you so much.
1: See you soon. Talk to you soon again.
0: Thank you.
1: See ya. Bye.
0: Another song for you guys. 5 minutes में मैं आती हूँ.

0: बेस्ट हिट्स।
1: 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? मूवी देखी थी, पाव भाजी खाई थी, पंजी गए थे।
2: रॉन्ग। 2 अक्टूबर को गरबा नाइट है।
3: अरे भूली गया, आ डेट तो याद रखवानी छोए।
2: गरबा लवर्स, आर यू रेडी? ऑन अक्टूबर बीजी रिधम अने रास लेने आवे छे गरबा नाइट। चनिया चोड़ी अने केडियो रेडी राखो। एपेक्स मा थवानी छे फुल ऑन गरबानी धमाल। जॉइन अस फ्राइडे ऑक्टोबर 2nd एट 7 PM एट हवेली एपेक्स। डांस टू द इनक्रेडिबल बीट्स ऑफ अमृता मंके एंड निमेश नगर विद लाइव म्यूजिक, डिलिशियस फूड, फैमिली, फ्रेंड्स एंड रात भर गरबानी मौज। अर्ली बर्ड टिकट्स ओनली अंटिल सितंबर 7।
1: टिकट्स ऑन सुलेखा और चेक द रिदम एंड रास फ्लायर ऑन रेडियो नायरा फेसबुक, इंस्टाग्राम और radionaira.com। वन बीट, वन सर्कल, वन कम्युनिटी।
4: At Triangles Biryani in Morrisville, we are elevating the art of biryani with unmatched quality and flavor. From the finest hand-picked spices to the freshest vegetables and premium meats, every dish is a masterpiece. Don't miss our signature Kuku Pulav, a culinary delight available with chicken, goat, paneer, shrimp or fresh vegetables. It's fresh, flavorful and exclusive to the East Coast. Start your feast with sizzling appetizers, perfectly paired with your favorite hot drinks. Indulge in our weekday unlimited thali, a bountiful spread available in vegetarian and non-vegetarian options. Unwind with our signature cocktails like Pushpa the Fire, Classic Margarita, Old Fashioned, Negroni or Jungle Bird. Visit us today at 4121 Davis Drive, Morrisville or call 919-377-1029. Triangles Biryani, fresh, flavorful.
5: What if feeling better started with restoring your inner balance? Stress, emotional heaviness, low energy. Sometimes your body and mind are simply asking you to pause, reset and recharge. Discover Pranic Healing, a practical non-touch practice that works with life force to support greater calm, clarity, energy and well-being. Experience it first at a free Twin Hearts meditation and healing session every Thursday at 7 PM. Ready to go deeper? Join the beginner-friendly Level 1 Basic Pranic Healing class, September 26th and 27th in Kerry, or October 3rd and 4th in the Charlotte area. Tuition is $495. Pranic Healing complements professional care. Register at pranichealingnorthcarolina.com or call 252-410-2268. Pranic Healing North Carolina. Restore your energy, restore your balance.
6: Naira 101.9 FM, 99.9 FM, SD4 4090 AM. Pakka Desi, Pakka Loka.

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 4 14 90 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

0: पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।
1: आप सुन रहे हैं नारा 101.9 FM, 99.9 FM, SD 44 1090 AM, पक्का देसी पक्का लोकल।

आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए, कमर पे तेरी बटरफ्लाई, बॉडी तेरी मक्खन जैसे, खाने में बस तू बटर खाए। कम ऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट, खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: करे अंग अंग तेरा, तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा, तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा। पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा, लगे मीठी जैसे शक्कर शक्कर, आजा चला ले चक्कर चक्कर, बाकी के लौंडे पकड़ पकड़। I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Heartbeat.

0: Yeah.
1: गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट साइंड. मैं हूँ सबके दिलों का चिराग. मेरा नाम है आरजे पराग. 7 से 10 में रहता हूँ आपके साथ, मिटाता हूँ आपका स्ट्रेस एंड बनाता हूँ आपके मूड को रिफ्रेश. वेल, हर तरफ चारों दिशाओं में हर दिशा में बस एक ही नाम गूंज रहा है और वो है गणपति बापा मोरया. इतना मौसम जो है वो सुहाना हो रखा है बापा जब से आए, और वाकई में मौसम एक्चुअल में सुहाना हो रखा है. ठंडी हवाएं भी चल रही है. कैसे चल रहे हैं आपकी आज ये शाम? एंड 7 से 10 हमारा ये शो चलता है जिसका नाम है निर्वाणा नाइट्स. और कल से बाबा का जो आगमन हुआ है और वातावरण में जिस तरह से पॉजिटिविटी छाई है वो काफ़ी अलग लेवल की है. एंड एंजॉय करते हैं पहला ये गाना. एंड बने रहिएगा रेडियो नायरा पर, पक्का देसी पूरा.

एंजॉय किया आपने गाना। गाना था वाकई में काफी बेहतरीन। आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स, एंड अब शुरुआत करते हैं लोकल खबरों से। तो पहली खबर यह है कि कल मॉरिसविल और कैरी इलाके में एक बहुत बड़ी 30 इंच की पानी की मेन पाइपलाइन फट गई थी। इस वजह से करीब 50,000 ग्राहकों के घरों में पानी की दिक्कत देखी गई और लोगों को बोतल बंद पानी खरीदना पड़ा। प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई थी कि सोमवार को कैरी के कई स्कूलों को समय से पहले ही बंद करना पड़ा। एंड खबरों के मुताबिक आज मंगलवार को मरम्मत का काम काफ़ी हद तक पूरा कर लिया है और सभी प्रभावित स्कूल आज से अपने नॉर्मल स्केड्यूल पर वापस लौट आए हैं। मतलब ये दिक्कतें होती रहती हैं। फिलहाल एंजॉय करते हैं अगला ही गाना।

पीढ़ियों से हम निभाते आए हैं 22 कैरेट खरा रिश्ता। आप भी एक नए रिश्ते की शुरुआत करें। राज ज्वेल्स नॉर्थ कैरोलिना।

आप सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडित बदाम नाइट्स। मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो होती रहती है अक्सर, इसके लिए क्या प्रिकॉशन लेंगे, लेकिन कुछ परमानेंट समाधान पाइपलाइन फूटने का मिलता है तो ये काफ़ी अच्छी बात कहलाएगी। एंड अगली न्यूज़ है जिसके बारे में हम तो बहुत बार बात कर चुके हैं। इस वीकेंड के दौरान मैंने 60 कहा था, लेकिन कुल मिलाकर रिपोर्ट के अनुसार चोरों ने अलग अलग होटल और अपार्टमेंट से बाहर खड़ी करीब 80 गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरी के वारदात को अंजाम दिया है। इट्स नॉट 60, इट्स 80। पुलिस का कहना है कि चोरों ने गाड़ियों से कम दो बंदूकी चुरा लिए और मामले की जांच जो है वो जारी करी है। तो ये ऐसी चीज़ है, मतलब बियर ग्रीक की ये घटना मैंने आपको बताई। मैं यही कह रहा हूँ कि आजकल तो ऐसा लग रहा है कि व्हीकल परचेस करना ही एक खतरा है ना। एंजॉय कर रहे हैं।

अब सुन रहे हैं रेडियो नायरा पंडिरवन नाइट्स एंड रैली के पैंटेलटन लेक इलाके से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां वेक काउंटी शेरिफ दफ्तर ने एक 66 इयर्स ओल्ड महिला ने जो है वो पशुओं के साथ बड़ी क्रूरता से पेश आई है। पशु क्रूरता के आरोप में उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। महिला के घर से 3 कुत्ते मृत पाए गए, जबकि 2 अन्य कुत्तों और 3 बिल्लियों को गंभीर हालत में वहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। आरोपी महिला को आज काउंटी कोर्ट में जो है वो पेश किया जा सकता है। मैं हमेशा से ही एक चीज़ कहता हूँ कि पेट अगर पालना है आपको, अच्छे से रखना है तो ही रखिए, वरना पेट कोई खेलने की चीज़ नहीं है। उनको भी इमोशंस रहते हैं एंड अटैच्ड वो भी हो जाते हैं। दैट्स व्हाई पालना है तो अच्छे से पालो, वरना मत पालो।

यार जब गाना बजे लगे सब सर हिलाने शौकीन चाहिए टिकटे चाहे होने देना शौक ऐसे मुझे गाली बकते पर इंस्टा पे मेरे साथ चाहिए फोटो घड़ी धीरे चलती हम तेज चलते भर डाला ओटू इनके फेस बनते इनके करियर से लंबे हम पे केस चलते ए

अब सुन रहे हैं रेडियो नायरा पर निर्वाणा नाइट्स एंड कलाकारों का मेला। जी हाँ, रैली के डाउनटाउन में इस हफ्ते साकॉन फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो शुरू होने जा रही है। मुफ्त एंट्री। इस फेस्टिवल में 2000 से ज़्यादा लोकल कलाकार जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड क्या खास रहेगा, तो जिसमें रहने वाला है म्यूज़िक, डांस, शानदार पेंटिंग्स और डिलीशियस स्ट्रीट फूड का मज़ा आप आपके परिवार के साथ बिल्कुल मुफ्त में यहाँ पे ले सकते हैं। रैली में सार्क आर्ट फेस्टिवल की धूम चल रही है और ये बहुत ही अच्छा फेस्टिवल रहता है। तो आप अगर यहाँ जाने का प्लान कर रहे हैं, कुछ आपको नया देखने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हैं। एंजॉय करते हैं अगला गाना, बने रहिएगा रेडियो नायरा पर।